0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुबह की भीनी भीनी हवा के साथ, सूरज की किरण सुगंध के साथ आप सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना, संगीत राम कृष्ण चंद्रेशी का।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज में ये भक्ति गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर पाठक की शब्द रचना। संगीत है मुरली मनोहर स्वरूप का।

आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनवा रहे हैं मीरा कार्की की आवाज में कवि दौलत राम की रचना संगीत के एस नरूला का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद सुबह 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6:55 पर। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा सुबह 7:00 से। सुबह 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत, विषय प्राकृतिक खेती की जानकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर एस के तिवारी। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 से। साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा सुबह 7:20 से। संकलन व निर्माण सहबा नासिर का, संयोजन व प्रस्तुति सुब्रता यादव की। संगीत सरिता कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:50 से। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 से। लोक संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 से। सुबह 8:25 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य, प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीली कोठी सागर। सुबह 8:30 से सुनिएगा बाल सभा। सुबह 9:00 से प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। सुबह 9:10 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10:00 से सुनिएगा जिले की चिट्ठी, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सुबह 11:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:00 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 से। दोपहर समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर 2:15 पर। और दोपहर 2:30 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5:00 इस घंटे की सुर्खियां रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। सुनिएगा शाम 5:02 से रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। शाम 5:40 से सुनिएगा संगीत सरिता। शाम 6:00 का समय होगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सदाबहार गीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 से। शाम 6:45 से सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम। शाम 7:20 से सुनिएगा ग्राम सभा कार्यक्रम। रात्रि 8:00 से रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुर्खियों में। रात्रि 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की, विषय

ग्रीन इंडिया मिशन आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। रात्रि 8:30 से सुनिएगा चित्रपट संगीत। रात्रि 8:45 से समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से सुनिएगा मन चाहे गीत। रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का।

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं एक ही रास्ता फिल्म से मजरूह के बोल, आवाज़ और संगीत हेमंत कुमार का।

अभी आप सुन रहे थे एक ही रास्ता फिल्म से, आवाज़ थी हेमंत कुमार की। अब आपको सुनवा रहे हैं रिमझिम फिल्म से खेमचंद प्रकाश का संगीत। गीतकार हैं मोती बीए, गायक कलाकार रमोला और मोहम्मद रफ़ी।

मेरी। हवा तू उनसे जाकर कह दे, एक दीवाना आया है।

0: सजी आंखें हुई है चार, तुमको देखे बिना न तब से मिलता हमें करार।
1: अच्छा,
0: यही अफसाना लाया है।

जवान। एक झलक दिखला दो रानी, दे दूं अपनी जान। एक झलक दिखला दो रानी, दे दूं अपनी जान। यही नजराना लाया, यही नजराना।

0: अभी आप सुन रहे थे रिमझिम फिल्म से, गायक कलाकार थे रमोला और मोहम्मद रफ़ी, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके

0: साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार रमेश शास्त्री, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनवा रहे हैं आदमी फिल्म से सुधा मल्होत्रा की आवाज़, गीतकार सरताज, संगीतकार रामनाथ।

सुधा मल्होत्रा के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 MHz पर। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रियम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अत च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तरभारतपर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरंतर क्रियमाणानाम् आलोचनानाम् प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रुपयाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,000+ वर्षस्य अक्टूबर मासात् अंडमान निकोबार

0: द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलीमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वार पर्यन्तं संपर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं सप्त स्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह।

श्रोताओं, आज का दिन हमें एक ऐसी आदत की याद दिलाता है जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को बदल देती है, और वो है पुस्तक पढ़ने की आदत। किसी ने कहा है, किताबें हमें वो दुनिया दिखाती हैं जिसे हमारी आंखें अकेले कभी नहीं देख सकती। सच ही तो है, हम अपनी जिंदगी में जितने वर्ष जीते हैं उनमें अपने अनुभव सीमित होते हैं, लेकिन किताबों के माध्यम से हम हजारों लोगों के अनुभव, संघर्ष, विचार और जीवन दर्शन से परिचित हो जाते हैं। हम संत कबीरदास जी को पढ़ते हैं तो जीवन की सादगी सीखते हैं, संत तुलसीदास जी को पढ़ते हैं तो मर्यादा का अर्थ समझते हैं, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो समाज की वास्तविकता दिखाई देती है, और किसी वैज्ञानिक या महान व्यक्तित्व की जीवनी पढ़ते हैं तो संघर्ष के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संत कबीरदास जी का दोहा आज भी प्रासंगिक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कितनी सरल बात है, केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं, उपयोगी होना भी जरूरी है। यही बातें हमें अच्छी किताबें सिखाती हैं। ज्ञान केवल अपने तक रखने की चीज नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। कहते हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति हजार जीवन जीता है, और जो नहीं पढ़ता वो केवल एक जीवन जी पाता है। पुस्तकें केवल ज्ञान नहीं देती, वे हमारी भाषा को परिष्कृत, विचारों को गहरा और दृष्टिकोण व्यापक बनाने में सहायक होती हैं। और देखा जाए तो ये हमें स्वयं से मिलाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पढ़ते समय कोई पंक्ति से हम अपने आप का नाता देखने लगते हैं। लगता कि यही तो मैं महसूस कर रहा था लेकिन शब्द नहीं दे पा रहा था। यही किताबें हमारे मन की अनकही बातों को शब्द देती हैं। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस है, तो कम से कम हम इस बात पर अमल कर सकते हैं कि जो पढ़ूंगा उसे समझूंगा, जो समझूंगा उस पर विचार करूंगा, जो जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम अपने जीवन में लागू करेंगे। कहते हैं, किताबें खामोश जरूर होती हैं लेकिन इनके पन्नों में पूरी दुनिया बोलती है, तो क्यों ना हम आज ही किसी पुस्तक को अपनी अलमारी से निकालें, उनके पन्ने पलटें, शायद कोई विचार हमारा इंतजार कर रहा है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल दे। कहा गया है, धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं लेकिन ज्ञान केवल अर्जित किया जा सकता है। आज सुबह सुबह बस इतना ही, दीजिए इजाजत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। आकाशवाणी सागर से अब प्रस्तुत है कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में सुनिए प्राकृतिक खेती की जानकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर एस के तिवारी।
1: किसान भाइयों, अब हम थोड़ी सी अपनी खेती जो रासायनिक खेती हो रही है उससे हटके चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो हमारी रासायनिक खेती हो रही है, उस रासायनिक खेती का परिणाम ये हो रहा है कि तमाम सारी जो है वो बीमारियां मनुष्यों में जो कभी नहीं होती थी, और खास करके गांवों में हम देखते थे कि पहले लोग गांव में अपना स्वस्थ जीवन जीने के लिए शहरों से गांव की तरफ पलायन करते थे, वहां स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन अब चूंकि रसायनों का असंयमित और असंतुलित रूप से प्रयोग का परिणाम ये हो रहा है कि हमारा जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है खेती से इस समय, वो सब हमारे स्वास्थ्य को फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जरूरत है कि हम जहर मुक्त खेती करें, और उस प्राकृतिक खेती जिसका नाम दिया गया है इसकी बात अभी सब जगह हो रही है। और हम जहां कहीं भी किसानों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसान के पास 2 एकड़ भी जमीन है तो आधा एकड़ हिस्से में अपनी प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, न कोई करिश्मा है, न कोई वैज्ञानिक। ये वो पद्धतियां हैं जो हमारे बरसों पहले लोग किया करते थे। हमारे पहले की पीढ़ी जो है वो प्राकृतिक खेती ही करती थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती करती थी, जहर मुक्त अन्न पैदा करती थी, जहर मुक्त सब्जियां पैदा करते थे और खाते थे, उसको खा करके 100 साल तक जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज ये स्थितियां हैं कि रसायनों के असंतुलित और असंयमित प्रयोग से हमारी खेती में जो कुछ भी उत्पाद मिल रहा है वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम है, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे खेत में, हमारी जमीनों में, हमारे गांव के परिवेश में जो उपलब्ध है, उनका हमको भरपूर उपयोग अपनी खेती में करना है। प्राकृतिक खेती में किसानों को अपने खेत पर बीज उपचार करने से लेकर के कीड़े मारने तक दवा सारी अपनी उसको स्वयं के अपने संसाधनों पर तैयार करना है। बीज उपचार करने के लिए किसान बीजामृत बना ले, और बीजामृत बनाने के लिए कोई कुछ बाहर से किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ देसी गाय का प्लास्टिक के ड्रम में गोमूत्र इकट्ठा कर ले, गोमूत्र इकट्ठा करने के बाद देसी गाय का गोबर इकट्ठा कर ले और थोड़ा सा उसमें चूना 50 ग्राम चूना मिला दे, प्लास्टिक का ड्रम ले ले, उसमें जो है वो 20 किलो गोबर और 20 लीटर गोमूत्र ये मिला ले और 50 ग्राम चूना मिला करके उसको ड्रम के अंदर रख दे छायादार जगह में, 2-3-4 दिन के लिए इसको छोड़ दे, सिर्फ सुबह शाम उसको डंडे से क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में सिर्फ 2 बार डंडे से, लकड़ी के डंडे से चला दे। आपका 1 हफ्ते के अंदर जो बीज उपचार करने वाला मटेरियल बन के तैयार होगा, वो आपके बीज अगर आप इससे उपचारित करते हैं तो आपके बीज को फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से, यहां तक कि निमेटोड जो सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म नुकसान देने वाला कीड़ा है, नुकसान करने वाला, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाई बीज उपचार करने से लेकर के, बीज उपचार कर ले उसके बाद आप किसान जो हम खड़ी फसल में जरूरत होती है खाद डालने की, उसके लिए जीवामृत बना ले, बीजामृत बना ले, घन जीवामृत बना ले, और इनमें सब में वही चीजें लगनी है। जैसे किसान जीवामृत बना रहा है उसमें देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और जो बेसन या कुछ दाल की जो फसलें होती हैं, इनका दाल का आटा और पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, जो पुराने पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे किसान 1 मुट्ठी मिट्टी लेता है, उसमें मिलियंस अरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं लाभ देने वाले। आपने सबने भी देखा होगा कि कहीं गांव में आसपास कहीं अगर पुराना पीपल या बड़ का पेड़ दिखता है, उसके नीचे आप चले जाओ, देखो उसकी जमीन इतनी आपको समृद्ध मिलेगी, इतनी ताकतवर जमीन मिलेगी, इतनी न्यूट्रिटिव मिलेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि लगातार पीपल और बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं और वहीं डिकम्पोज होकर के अच्छी बढ़िया ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते रहते हैं। समस्या ये है कि हमारे खेतों में जो खेती कर रहे हैं, जिन खेतों में हम, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की बहुत कम मात्रा है। ऑर्गेनिक कार्बन एक तत्व है जिसकी मात्रा अगर एनालिसिस की जाए तो जो भारी काली जमीनें हैं उनमें भी बहुत कम देखने में मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम खेत में ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करें, और ये जो हमने कहा कि देसी गाय का गोबर और गोमूत्र और ये बेसन और ये दाल की जो आटा है, ये सब क्या हमारे खेत में मिट्टी में तमाम सारे मिलियंस लाभदायक जीवाणु है, ये उनके लिए फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो बैक्टीरिया उसको जीवाणु सबको खाद्य पदार्थ मिलता है, वो अच्छे मजबूत होते सशक्त होते और अपना।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाय मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती प्रदर्शित करती है जीडीपी में 7.8% की तिमाही वृद्धि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की इंदौर में मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की
1: अपग्रेड कर दी।
0: इंदौर में कल मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर मेट्रो रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक चलेगी। इंदौर मेट्रो नागरिकों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी और रोजाना 70 से अधिक फेरे लगाएगी। मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण के शुरू होने से आवागमन और सुगम होगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार होगा।
2: इंदौर के इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया कि जब मेट्रो इस रूट पर चली है और इसका जनता को जितना लाभ मिलने वाला है ये अच्छा याद रहेगा। और एक बड़ी जनरेशन ऐसी है जो मेट्रो को सवारी के नाते से लाभ उठाएगी, उनका जीवन जो है उसमें ईज ऑफ लिविंग के नाते से सरल बनेगा, उनका समय बचेगा, पंक्चुअलिटी आएगी। अभी आने वाले 3 साल के बाद ये मेट्रो जो है जो अंडरग्राउंड मेट्रो के साथ जब जुड़ जाएगी तो जो शहर के पुराने बाजार हैं उनके साथ जुड़ेगा, रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ेगी, मेट्रो जो है एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा। इंदौर शहर के

0: हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश सहित 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में 15 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 6 शिक्षकों और शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में डॉ. अर्चना शुक्ला, शैलेंद्र प्रताप सिंह, संगीता यादव, प्रोफेसर सौरभ दत्ता, रीना गुप्ता और ज्योतिबाला राठौर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों ने अपने नवाचारों, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। वहीं धार में भी 208 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 13 विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 10:30 बजे सिविल अस्पताल मंडीदीप पहुंचकर पौधरोपण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1 बजे ओबेदुल्लागंज के शासकीय सांदीपनी स्कूल पहुंचकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम तथा मेधावी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को कल 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए मात्र 56 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं भारत ने महिला एशिया कप के ग्रुप ए के इस मैच में पाकिस्तान को 18 ओवर 1 गेंद में सिर्फ 55 रन पर ही समेट दिया था। टी20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में पाकिस्तान का यह सबसे कम स्कोर था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल पक्षी भ्रमण एवं गिद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को गिद्धों की पहचान, उनकी जीवन शैली, भोजन, आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता राजगीर ने बताया कि गिद्ध प्रकृति के महत्वपूर्ण सफाईकर्मी हैं। वे मृत पशुओं के अवशेषों को शीघ्रता से समाप्त कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। श्योपुर का आवदा डैम अपनी 45 फीट की भराव क्षमता के बाद ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं विजयपुर में बारिश से क्वारी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। नदी पर बना पुल डूब जाने से विजयपुर टेटरा मार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। सतना के चित्रकूट में हाल में आई बाढ़ के बाद अब मुख्य सड़कों और प्रभावित इलाकों में जमा गाद एवं मलबा हटाने के बाद आवागमन बहाल हो गया है। जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधा और भोजन तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्ट्रेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार और उनके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त कटनी जिले के शिकारू शेरू पारधी और शेरू सिंह को शहडोल जिले के ब्योहारी से कल गिरफ्तार किया। गोगा नवमी के अवसर पर कल छड़ियां निकालने की 128 वर्षों की परंपरा के तहत खंडवा और आगरमालवा में वाल्मीकि समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में कल जल और वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के संदर्भ में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तथा प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। शिवपुरी में मलेरिया विभाग और न्यायपालिका की संयुक्त टीमों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। अशोकनगर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल माय भारत के तहत 30वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हो गया है।

और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय एवं विश्वरंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय टैगोर नाट्य महोत्सव का शुभारंभ आज होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती को प्रदर्शित करती है जीडीपी में 7.8% की तिमाही वृद्धि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की इंदौर में मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण सहबा नासिर का, संयोजन व प्रस्तुति सुब्रता यादव की।
1: गागर में सागर।
2: पत्रिका गागर में सागर के साथ हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस पत्रिका कार्यक्रम में सबसे पहले पेश है सागर मंथन।
1: सागर मंथन।
2: सागर नगर में बीते सप्ताह कई आयोजन हुए, आइए कुछ आयोजनों की चर्चा करते हैं। सागर नगर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। मंदिरों व सड़कों पर धूम देखते ही बनती थी। शिक्षक दिवस पर जगह जगह शिक्षकों का सम्मान किया गया तथा विद्यार्थियों ने आयोजन किए। शुभकामनाएं देते हुए ये हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव संतोष ठाकुरा जी।
3: तो यहाँ पे जितने भी आदरणीय गुरुजन हैं, चाहे वो स्कूल के लेवल के हो या कॉलेज के लेवल के हो या विश्वविद्यालय के लेवल पे हो, या यूं कहें कि जो कोई भी जिनको कोई कुछ सिखा सकता है, उनको जो भी गुरु मानते हैं, अपने जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सब गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है और सब बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन शिष्यों को जिन गुरुओं ने उनका मार्ग प्रशस्त किया, उनको प्रकाशमय किया, उनके जीवन को आने वाले समय पर उनका जो भविष्य की कामना की है, उनका आशीर्वाद मिला है। ऐसे इस पावन दिवस पे हम शुभकामनाएं देते हैं और साथ में हिंदी माह की भी शुभकामनाएं देते हैं।
2: जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर युवाओं द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। अधिक जानकारी देते हुए
4: मैं स्वामी यादव वार्ड क्रमांक 11 वृंदावन वार्ड मकरोनिया से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आज हम विशाल वाहन रैली निकाल रहे हैं शहर के प्रमुख मार्गों से। रिमझिरिया मंदिर से ये रैली प्रारंभ और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सदर 15 मोहल में इसका समापन होगा और प्रसादी वितरण कार्यक्रम सदर में किया गया।
2: गृह मंत्रालय के आदेश पर इस बार हिंदी माह का आयोजन आरंभ हुआ है। ये हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री संतोष सहगौरा।
3: देखिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत बहुत अभिवादन। निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं कि ये जो हिंदी माह है, ये पहली बार गृह मंत्रालय द्वारा आदेश प्रसारित किए गए हैं राजभाषा विभाग की ओर से समस्त केंद्रीय कार्यालयों को। अभी तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता था और अब इसे इस साल से हिंदी माह मनाना है। तो यानी पूरा सितंबर जो माह है ये पूरा हिंदी में रहेगा और इसपे इसी प्रकार आप जानते हैं विश्वविद्यालय सागर में बहुत बड़ा है और गौरव की विरासत है। तो यहाँ भी राजभाषा हिंदी के प्रति जो जागरूकता है, कार्यालय कामों में हिंदी का आधिकारिक प्रयोग कैसे हम करें, हिंदी में जो यूनिकोड है, ई ऑफिस में हिंदी का जो प्रभावी उपयोग है कैसे हम कर पाए, इसके लिए विश्वविद्यालय के जो हमारे सभी सम्माननीय शिक्षक हैं, अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बीच में कुछ हिंदी को रुचिकर बनाने के लिए, कुछ रचनात्मक मतलब अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग हिंदी माह का ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूरे माह हम बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं और सबसे खास बात यह है कि इन प्रतियोगिताओं के जो विजेता है उनको पुरस्कार भी दिया जाता है और विश्वविद्यालय में शायद ही इकलौती ऐसी कोई प्रतियोगिताएं होंगी जहां पे नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।
2: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सागर द्वारा युवा तथा आम जन को जागरूक करने के लिए IMA द्वारा नशा मुक्ति तथा तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान चलाया गया। IMA अध्यक्ष डॉक्टर तलहा साद ने बताया,
5: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संभागीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास तिली वार्ड सागर में एक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया और इसमें विशेष तौर पे नशे से संबंधित सारी जानकारी साझा की गई। किस प्रकार छोटी सी छोटी भी नशे की चीजें जैसे मीठी सुपारी और फिर उसके बाद गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और इत्यादि की जो आदत
2: में खराश है, किसी की नाक बंद है, तो ये सब क्यों होता है और इससे कैसे बचें?
6: एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है सागर डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कान की बीमारियां बहुत ज्यादा है, जितना गला और ये नाक बंद ये सीजनल है, पर कान की बीमारी जो है उसमें हियरिंग लॉस हो सकती है, कान में फफूंदी हो जाती है, और जितने पेशेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी कान के पर्दे में छेद है उनमें और बहने लग जाता है। तो इस समय लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल में आए इसको नेग्लेक्ट ना करें कि हमारा कान बचपन से ही बह रहा है। इस टाइप के बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बहुत लेट आते हैं ऑपरेशन के लिए। तो जो कान का बहना है वो डेफिनेटली क्योरेबल है, हियरिंग लॉस भी हम उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं सारी जनता को बोलना चाहती हूँ कि आए अपने आप को दिखाए। और कान में खुजली हो ये एक फंगस होती है जो बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा होती है, उसको हम ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं।
7: छोटे बच्चे भी कई बार देखा गया
6: कान में वो, ये बहुत समस्या है कि कान बह रहा है या तालाब में चले गए नहाने तो उसमें भी फंगस हो जाती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि आना चाहिए क्लीन होके मेडिसिन से वो ट्रीटेबल है।
7: जी जी।
6: दूसरा नाक में साइनसाइटिस हो सकती है और एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, तो एलर्जी के लिए तो बेस्ट चीज होती है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ एलर्जी इज प्रिवेंटेबल मोर देन क्योरेबल, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए।
7: ये जो बरसात का मौसम है कुछ आप हमारे श्रोताओं से अपील करना चाहेंगी?
6: हाँ, अपना ध्यान रखिए, घरेलू नुस्खे अदरक की चाय ये सब भी आप ले सकते हैं, प्लस भीगने पे भी ध्यान रखिए कि कान में पानी ना आ जाए, और दूसरा ठंडा और खट्टा चीजों से थोड़ा सा परहेज।
2: अब मौसम की चर्चा करते हैं। वेदर सिस्टम सक्रिय होने से जिले में फिर बारिश शुरू हो गई है, आसमान में काले घने बादल छाए हैं, इस दौरान रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी आई है। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, शिखर की ओर।
1: शिखर की ओर।
2: आज इस प्रोग्राम में लाए हैं सागर के कुछ विकास कार्यों की जानकारी, ये हैं सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन।
8: आपसे जानना चाहते हैं कि सागर के लिए खुशी की खबर है कि हमारे यहाँ हवाई अड्डा शुरू होने की सुनगुन शुरू हो गई है, तो उसके लिए बात कहाँ तक पहुँची और जमीन वगैरह का कहाँ पर देखा जा रहा है और क्या संभावित है?
9: जी नमस्कार। अब क्योंकि सागर जो है महानगर की तरह से विकसित हो रहा है, बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और अन्य सुविधाएं हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे एजुकेशनल हो, बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, और लोगों की एयर कनेक्टिविटी की मांग बहुत जमाने से है। हम लोगों ने जो हमारा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसी को बढ़ाने के संबंध में सही की थी, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण नई साइट ढूंढने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधि जल भी देख रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय भी इस विषय में बहुत गंभीर है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सागर में हवाई कनेक्टिविटी हो जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा।
8: तो हम कब तक उम्मीद

0: हैं कि सागर को हवाई अड्डा मिले।
1: बेसिक आवश्यकता जो है वो है जमीन की। जमीन क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए जमीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो एक चक जमीन शासकीय रकबा कहीं मिले उसकी कोशिश हो रही है। दीना रोड पे भी चल रहा है, भोपाल रोड पे भी, जहाँ भी उपलब्धता मिलेगी और जैसी आवश्यकता हम लोगों की वो पूर्ति होगी तो ऐसी जगह पे हम लोग जरूर बनाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी साल डेढ़ साल के अंदर जो है हमारी एयर कनेक्टिविटी बन जाए।
0: जी जी, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उसका कोई संभावित नाम अभी सोचा गया है?
1: ये तो बहुत भविष्य की उसमें छुपा हुआ है।
0: हम ये भी कहना चाहते हैं कि सागर नगर की पूरी तस्वीर ही मानो बदल गई है, अपना सागर बहुत सुंदर बहुत अच्छा हो गया है। तो हम चलते चलते ये और जानना चाहते हैं कि वो खास क्या बिंदु है विकास के जो हमारे विधायक महोदय बताना चाहते हैं कि हाँ ये
1: अब जैसे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी होना चाहिए। इस दिशा में अभी न्यूरोलॉजी और अन्य विभागों के भी मिल गए हैं, सैंक्शन हो गए हैं। बहुत जल्दी सागर को कैंसर हॉस्पिटल भी मिलने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए स्पेशल ग्रांट दी है।
0: अच्छा।
1: और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी इत्यादि के लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बातचीत चल रही है। आगामी समय में ये तमाम चीजें सागर को मिलेंगी जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और बहुत जल्दी सागर में एक नवीन विश्वविद्यालय का जगह देख ली गई है वो उसकी नई।
0: जी हाँ, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द और भी सागर नित नए ऊंचाइयों के आयाम छूता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया।
2: अब बारी है पत्रिका के अगले चरण सागर के मोती।
3: सागर के मोती
2: आज के इस अंक में शामिल हैं मिसेज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड श्रीमती अपूर्वा, उनसे बातचीत कर रहे हैं सागर आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक जय शेखर।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं सागर की ही रहने वाली, सागर की पैदा हुई एक ऐसी बेटी जिन्होंने मिसेज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का खिताब जीता है। अपूर्वा दुबे से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्ते, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया है और मैं इसकी बहुत आभारी हूँ।
4: हमें ये बताएं कि आपका बचपन, आपका जन्म कहाँ हुआ?
5: मेरा बचपन कह सकते हैं मैं सागर की हूँ और यहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, ग्रेजुएशन यहीं करा है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि मेरे फादर यहाँ विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में रह चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर गिरीश मोहन दुबे। और जब हम बात करते हैं फैमिली सपोर्ट की तो मुझे यहाँ भी बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे इन-लॉज की तरफ से भी मिला है और मेरे हस्बैंड मिस्टर राहुल वैद्य। क्योंकि क्या होता है, परिवार का सपोर्ट ही रहता है जो आपको एक सक्सेस उसकी तरफ ले जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब परिवार का साथ हो तो उससे अच्छी चीज़ क्या होती। तो विश्वविद्यालय में जब हम लोग रहते थे तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कितना अच्छा रहा है। सागर का जो टच होता है ना, तो वो मतलब एक अलग होता है क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छे से शेप करने में मदद करता है एज अ ह्यूमन बींग, मैं बोल रही हूँ, एज अ पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है आपकी। तो सागर में एक ये कि एक मॉडर्न टच भी है और जड़ों से जुड़ने का भी उसमें, हाँ, पारंपरिक पूरा है।
4: जी, जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि इसके पहले किसी और प्रतियोगिता में आपने सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया क्या?
5: जी, ये मेरा चौथा क्राउन है इस साल। हाँ। का इसके पहले मैंने राजघराना मिसेस गृहलक्ष्मी 2026 MP वो भी मैंने जीता था। उसके बाद मैंने मिसेस MP मैं टैलेंट जो टाइटल है वो मैंने जीता है। और उसके बाद मेरे मुझे मिसेस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड के बारे में पता चला था। तो तैयारी करने का इतना समय नहीं था, लेकिन कहते ना कि जो पुराना जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उसको मैंने यूज करते हुए, उसको उपयोग करते हुए फिर मैंने यहाँ पे जो ये मुझे पता चला, मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा और मुझे दो टाइटल मिले, एक आइकॉनिक ब्यूटी का मिला है मुझे यहाँ पे और मेन जो टाइटल है जो विनर है वो मैं यहाँ जीती हूँ।
4: सागर की बेटियाँ जो आप जैसा बनना चाहती हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप और वो कैसे तैयारियां करें?
5: अगर बात करें, मैं मिस की नहीं अकेले बात कर रही हूँ, मिसेस के लिए, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि मिसेस के लिए प्लेटफॉर्म कम मिलते हैं।
4: हाँ।
5: लेकिन आजकल जो एक्सप्लोर करना चाहेंगे अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है।

0: करेंगे कि अगर कैसे पार्टिसिपेट करें, तो ये बहुत, जैसे आप लोकल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, फिर आप नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप में अभी एक्सपीरियंस की कमी है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप जो भी स्टार्ट करना चाहें वो पहले लोकल लेवल से स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें ये रहता है कि हर जगह जहां आप देखते हैं टर्म मॉनिटरी जो चीजें इंक्लूड रहती हैं, उसमें फ्रॉड के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो अगर आप कोई भी किसी भी चीज में कोई पार्टिसिपेट करना चाहें, स्पेशली ब्यूटी पेजेंट में, तो पहले वो बैकग्राउंड चेक करें कि वो कैसा है, वर्थ है कि नहीं है आप जितने पैसे, क्योंकि इसमें हर चीज में पार्टिसिपेशन फीस तो आपको देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन। और उसके बाद कई बार आपको जो अटायर्स हैं, जो जो ड्रेसेस हैं, उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है, कई बार नहीं की जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो मॉनेटरी जब आप चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप जहाँ पैसे दे रहे हैं वहाँ सच में देने लायक है कि नहीं है। और बाकी तैयारी ये रहता है कि कॉन्फिडेंस ऑलवेज मैटर।
1: अच्छा, हमारे एक आखिरी और उसी में एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि आजकल सौंदर्य प्रतियोगिताओं की भी भरमार हो गई है, तो कैसे हम समझें कि ये सही सौंदर्य प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जब आप इतनी सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं, तो अब आपका अगला उद्देश्य क्या? क्या फिल्मों में जाना चाहेंगी, टीवी एक्टिंग करना चाहेंगी, या क्या है मंजिल आपकी?
0: देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये अच्छा है, एक तो क्या है, जितना ज्यादा पुराना पेजेंट होगा, कंपनी होगी उसकी, उतनी ज्यादा वो रिलायबल होती है। आप ये देख सकते हैं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पे किस तरह की चीजें पोस्ट हो रही हैं, वो कितना एक्सपोजर देते हैं अपने आके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, आपको समझ में आ जाता है उसमें। और उसके बाद कि आप आफ्टर विनिंग वो आपको कितना लाइमलाइट में दे रहे हैं, आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये आपको आजकल सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज लाइक, सब कुछ है, बस आपको थोड़ा सा विवेक अपना उपयोग करना है। और बाकी ये है कि बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके बाद। मेरे पास बहुत, ये जीतने के बाद मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई मॉडलिंग में, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मैं कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास चांस है कॉस्मस वर्ल्ड वाइड जो प्रतियोगिता होती है, दैट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल, अगर मैं चाहूँ। वैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, तो अगर मैं, जैसे कोई भी चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट बिफोर दैट एक नेशनल लेवल की उसमें पार्टिसिपेट करना एक काइंड ऑफ मस्ट माना गया है, क्योंकि आपको वहां पर देख लेते हैं सबकी, हाँ इनमें पोटेंशियल है, एंड देन दे फिर आपको आप बाहर भेजते हैं।
1: अपूर्वा, आपने हमसे बातचीत की और अपनी मेहनत के साथ आपने न सिर्फ अपने सागर शहर का नाम किया बल्कि प्रदेश को भी गौरवान्वित किया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने उद्देश्य को जरूर पाएं। आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगले पायदान पर यह है माटी की महक।
3: माटी की महक।
2: आज ई कार्यक्रम में हमारे संगे हैं लोकगीत गायक।
4: पहले तो अपने सभी आकाशवाणी दर्शकों को स्वागत करो सर जी।
2: हाँ भैया, सुनो है कि खूब नाम कमा रहे गायकी में, तो तन्नक अपना नाम तो बताओ पहले अपने भाई बहनों को।
4: तो अपने भाई बहनों के लिए हम बताओ चाहें कि हम सुनील लोधी हैं और सागर से हैं, छोटो सुगाव है अपने सागर जिला से आगरा की निवासी हैं।
2: हम जो बात करना खास कर चाह रहे वो एक लाने चाह रहे कि देखो, कहते हैं कि अगर ऊपर वाला कऊ को कोई एक चीज नहीं देत है तो उसके बदले में बहुत कछु दे देत, मनो आप मन की आंखों से दुनिया को देख रहे कहा है। और लेकिन आपने गायकी के तो अच्छे झंडे गाड़ रखे।
4: अब वो तो दीदी ऐसा है कि सब दर्शकों की सपोर्ट और आप को सपोर्ट और हनुमान जी की कृपा हो गई है, तो तना सो उठ गाओ है ना।
2: हाँ अच्छा, तो सुनील भैया देखो, काहे ना हमारे श्रोता सुनना चाह रहे होंगे, तो अपन कछु सुना दे हो के लाने, तो आपको सुन ले, फिर अपन अपने बतकाओ तो जारी रखे हैं।
4: तो जो हमारा सबसे पहले वायरल गाना भाव तो हम वो सुना रहे आपको।
2: हाँ, काहे नहीं, हाँ सुना।
4: तो मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट का तो प्रभु, ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट का तो प्रभु। अरे अंजन पुत्र के श्री नंदन तुम जग जग के काटत बंधन, तुम रे हृदय बसे रघुनंदन के तुम रे

0: रे दे में हाँ तुम रे रे दे में बैठे सीताराम है हमारे संकट का तो प्रभु।
1: वाह वाह वाह। और अब जा बताओ कि ये गायकी का शौक आपको कैसे लगो कि अपन को गाने चाहिए?
0: जो तो दीदी यहाँ सुना है कि अपनी पूजनीय लता मंगेशकर की गाना तो आपने सबने सुनी होंगे अपने रेडियो में बहुत।
1: हाँ, नहीं
0: तो उन्हीं की ट्रैक वगैरह हमने उठाए और उन्हीं की कृपा आज तनक सी हमारे ऊपर हो गई है। फिर उसके बाद में उनकी जब कृपा भाई तो दीदी के स्टूडियो में भी नाम मिलगा। एक अपन स्टूडियो है मुंबई में, वो तेरे रिकॉर्डिंग भाई की।
1: जो ही हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको शौक तो मनो कहो बहुत छोटे से स्तर से आपको शौक भाव और पहुंचत आप मुंबई कैसे पहुंच गए और वहां का कुछ अनुभव साझा करो हमारे साथ।
0: तो वो यहाँ स्वभाव दीदी के अपने जो संकट के कटैया तो आपने सुना ही मुझे, वो तो देश प्रदेश में भगवान की कृपा से तनाक वायरल हुआ है।
1: बिल्कुल
0: मैं तो संकट के कटैया हम उन्होंने एक तपरा में बैठ के गादा तो होता है ढोर मोर बने थे अच्छी मुश्किल हो।
1: अच्छा
0: हाँ तो वो तो सपन भी सब अच्छो खास वायरल होगा।
1: हाँ
0: और वो हनुमान जी की अच्छी कृपा रही होगा नाम है लता जी की कृपा हो गई उनकी स्टूडियो में अपन होगा को मौका मिल रहा हो।
1: क्या बात है क्या बात है।
0: बस मतलब रिकॉर्डिंग कर गए और मतलब रात में सोच रहे थे कि चलो ठीक है बस जब विश्राम कर लीजिए चार पाँच से गाना रिकॉर्ड करने के बाद में तब थोड़े से हार गए। हम जैसा ही सोवे को मूड बनो कि चलो मम्मा सो जाइए तो मम्मा कहने लगी कि यार एक पोस्ट और डाल दीजिए कि अपन मुंबई में है। पोस्टदारी तो अपने विशाल चतुर्वेदी जी की ऊपर नजर पड़ी तो जहाँ खुशी की बात भी है कि वही कॉलोनी है उनको बंगला हाथ जहाँ पे हम रुके थे।
1: अच्छा
0: हाँ तो 1 किलोमीटर के अंदर से कहने लगे सर के हमें आपसे मिल रहे हैं तो हम और फिर मतलब ऑटो पकड़ के और फिर होते उनकी गए सो मतलब दुकाना मतलब फिर सिलेक्ट करो उन्होंने फिर ये की मतलब आधा घंटा में रिकॉर्ड करके हनुमान जी की ऐसी कृपा भाई के आधा घंटा में वो रिकॉर्ड हो।
1: कौन सा गाना हूँ?
0: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई। अरे काहे की बनाओ बनाई काहे की पतवार। हाँ काहे की बनाओ बनाई काहे की पतवार। ओ रामा काहे की लगा दई जंजीरे सागर में नैया डारे दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई। अरे राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। हाँ राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम ज्ञान की लगा दई जंजीर सागर में नैया डारे दई।
1: देखो ऐसो लग रहा हो कि मनो सुनाती जाओ सुनाती जाओ। तो अब जब आप गा रहे हैं ऐसे खूब अच्छे बुंदेली लोकगीत गा रहे लोक भजन गा रहे तो आपके साथ में कछु कोई बजा रहा हो कि आप खुदा ही बजा भी रहे कछु?
0: नहीं वो मैं स्टूडियो में जो अपने विशाल भैया ने रिकॉर्ड करो है वो मैं तो खाली हमने तमूरा बजाओ है। वो सहयोग की बात ये भी रही कि उनने ऐसी जगह जो हमारा गाना सेट करो हनुमान जी की ऐसी जगह पे कृपा भाई हमारे ऊपर तन्नक्सी है वो रिकॉर्ड भी हमारा बिल्कुल ऐसी जगह पे सेट करो है उनने।
1: क्या बात है,
0: वो आज भगवान की कृपा थोड़ा सा गाना प्रमोट होगा और अपने सबकी दर्शकों की इतनी सपोर्ट रही इतनी कृपा रही
1: बहुत बढ़िया। देखो मनो इतने हमारे सागर के कलाकार मनो अब तो हम यही कह रहे हैं कि भारत में अपन को नाम होगा और इतने मशहूर हो गए और मुंबई पहुंच गए सो अपनी जो और संजोग रहा। मनो हिंदी गानों में तो आपने कह दी कि लता जी जो हैं वे तो खैर क्या है भारत को खिलाई है सो सबको अच्छी लगत है। कोई ऐसे अपने बुंदेली गायक या गायिका है जो आपको पसंद हुई है? हम काय पूछ रहे हैं कि हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद के बुंदेली लोकगीत गायक की आवाज में एक लोकगीत सुन है कार्यक्रम में सो ऐसे हम पूछ रहे हैं कि कोई नाम बता दो।
0: तो आप चलते चलते समय से अपनी उर्मिला पांडे दीदी को जो लोग की सुनने संज्ञा ले आई दो कर धनिया।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल तो हम आपकी पसंद पे अपने श्रोताओं के लाने भी सुनवा रहे हैं जहाँ लोकगीत और आपको बहुत बहुत आभार देना चाह रहे हैं कि आपने इतनो समय हमें दाऊ

0: इस सप्ताह चर्चा में अब बारी है इस सेगमेंट की।
1: इस सप्ताह चर्चा में
0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला तथा वहां के विद्यार्थियों ने हिंदी में श्री नरेंद्र मोदी जी की कविताएं सुनाई।
2: नरेंद्र मोदी जी की कविताएं, ताकि मानवता को कहीं लग न जाए कोई दा, ताकि मानवता को कहीं लग न जाए कोई दा, सपना आग के राग में कुचले गाए हैं, हिमालय की खोख में जंगली आग लगी है, इस जंगली आग को मिटाने दोरो और ईश्वर कृपा मांगो। उठो वीर और धीर, कायरता शरीर में समा जाए, उससे पहले उठो वीर अब तो जागो।
3: भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन क्या है। 21वीं सदी कहां भारत, अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं गढ़ते हैं। सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं गढ़ते हैं।
4: मैं देख रहा था कि कुछ पल मेरे लिए बड़ी भावुक थी। आज बहुत पहले लिखी गई मेरी कविताएं जो आज मुझे इस नौजवानों के मुंह से सुनने का अवसर मिला, और मैं देख रहा था कि जो हिंदी में कह रहे थे, हिंदी उनकी भाषा नहीं है, लेकिन भाव वैसे ही प्रकट हुए। जब मैं इसको लिखता था, मेरे मन में जो भाव थे, ये तब संभव होता है कि आप उस भाषा को जीते हैं, उस भाषा में डूब जाते हैं।
0: 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें ड्रोन, समुद्री सुरक्षा और AI आधारित विश्लेषण पर जोर दिया गया है। और अब साहिबा को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। स्वर व निर्माण साहिबा नासिर का।
1: गागर में सागर।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था सहबा नासिर का, संयोजन व प्रस्तुति थी सुब्रता यादव की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं अनिल पांडे की शब्द रचना, संगीत संदेश शांडिल्य का, आवाज शुभा मुदगल की।

0: श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की

0: उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरण यादव की आवाज में ये लोकगीत, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा तिवारी की आवाज में ये लोकगीत।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 कैंट पीली कोठी सागर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी।

0: स्कूल सागर
1: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वात्सल्य से बहुत वर्षों से जुड़े हुए एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। आपसे जानते हैं, सबसे पहले आपका नाम।
2: मेरा नाम मैम क्रीट जैन है।
1: तो ये बताइए क्रीट जी कि आप कितने साल से वात्सल्य से जुड़े हुए हैं?
2: मुझे इस स्कूल से, इस संस्था से जुड़े हुए लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं।
1: तो 30 वर्षों में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा। क्या आप परिवर्तन पाते हैं? क्योंकि समय के साथ हम सबको चलना होता है, हर स्कूल को उसके साथ चलना होता है, तभी वो सफल है। तो आपने क्या देखा कि किस किस दिशा में यहाँ पर परिवर्तन आते हैं और कैसे सुधार आते हैं?
2: मैंने तो काफी परिवर्तन देखे इस संस्था में। 30 वर्षों के इस लंबे सफर में वात्सल्य का जो कारवां है, इसका मैं साक्ष्य रहा हूं और काफी परिवर्तन देखने में आए। हमारी जो फाउंडर मेंबर कुसुम श्रीवास्तव जी ने स्कूल को शुरू किया था 1987 में, और मैं 1995 में इस संस्था से जुड़ा जब हमारी प्रिंसिपल मिसेस अलका श्रीवास्तव जी ने इसको टेक ओवर किया था। इन्होंने मिडिल 6-7 चालू किया था आगे
1: जी।
2: तो जब मैंने ज्वाइन किया तब 2 सेक्शन 6 के और 1 7 का था, पर छोटी सी बिल्डिंग थी, छोटा सा स्कूल था। मेरे 30 वर्षों में इसने एक बड़ा विराट रूप इस स्कूल ने धारण किया है और छोटी छोटी चीजों को करते हुए आज इतने रिसोर्सेज इसने पाए हैं, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है इस शहर में कि आज सब बड़ी स्कूलों में इसका नाम शुमार है। जब मैं ज्वाइन किया था स्कूल को तब यहाँ पे केवल 3 रूम थे और एक प्रिंसिपल मैम का ऑफिस था और छोटा सा कंप्यूटर लैब था। मैंने एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन किया था यहाँ पे।
1: अच्छा
2: जी। और फिर धीरे धीरे जब सेक्शंस बढ़ते गए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, तो हमने यहाँ पे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम शुरू की थी।
1: जी जी जी जी। तो आपका ये मानना है कि वात्सल्य निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है और जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप यहाँ सुविधाएं आती रही रहती हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगती हैं जो वात्सल्य को और स्कूलों के मुकाबले अलग बनाती हैं?
2: जी मैडम, क्या जैसे सारे स्कूल्स में सारी बेसिक सुविधाएं तो होती हैं
1: जी,
2: लेकिन हमारे स्कूल ने समय समय के अंतराल से जो नए चीजें हैं, जो इनोवेटिव मेथड्स हैं पढ़ाने के, वो अपनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ शुरू में कहीं दूसरे स्कूलों में नहीं थे, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब था। मैंने एज ए कंप्यूटर टीचर ही ज्वाइन किया था
1: जी।
2: हमारी प्रिंसिपल मैम भी कंप्यूटर्स में और तकनीकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। तो उस समय जो हमारा पहला बैच सन 2000 वाला था, वो आज उसके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं न्यूयॉर्क में और सारे उसमें, तो वो कंप्यूटर का ज्ञान हमने पहली बार दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: उसके बाद धीरे धीरे हमने AI इंट्रोड्यूस किया, हमारे यहाँ ATL लैब आए। तो समय के हिसाब से जो परिवर्तन आना था, फर्स्ट मूवर जिसको बोलते हैं, पहला कदम उठाना, वो हमारी संस्था ने लिया।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने बातें हमारे साथ साझा की। अब देखिए, सुना गया है कि जहाँ विज्ञान और संस्कृति का समावेश होता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ऊंची श्रेणी के आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो संस्कृति की तरफ मॉरल अच्छे रहे बच्चों के, उसके लिए भी कुछ होता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत कुछ होता है हमारे यहाँ। हम बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ा तो रहे ये, लेकिन साथ में हम उसमें सभ्यता का, कल्चर का, मॉरल वैल्यूज का, नैतिक शिक्षा का समावेश भी करते हैं। साइंस IQ बढ़ाता है, लेकिन हमारे कल्चर और हमारे मॉरल वैल्यूज उनमें इमोशनल कोशियंट बढ़ाती है। तो हम ये IQ और EQ जिसको बोलते हैं आज की तारीख में, इस ये नए Gen Z और अल्फा जो है, नई जनरेशन है, उनमें हम देने की कोशिश करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया अक्रीत भाई, आपने इतना समय दिया।
2: धन्यवाद।
1: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 कैंट पीली कोठी सागर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: प्रेरणा की एक किरण जब मन में उजियारा करती है, रुकते कदमों को भी आगे बढ़ने का सहारा देती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है हमारे तमाम नन्हे मुन्ने श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में। जी हाँ बच्चों, स्वीकार कीजिए सुनंदा दीदी की ओर से ढेर सारा प्यार और दुलार। जहाँ भी है बच्चों, जल्दी जल्दी अपने अपने रेडियो सेट के सामने आ जाइए। हाँ हाँ, रेडियो के पास आइए ना, जहाँ भी है जल्दी जल्दी आइए। आज हम आपसे उस शक्ति की बात करेंगे जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, अच्छा बनने की और अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी तो देती है ना। चलिए ऐसी ही कुछ चर्चा के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम के प्रथम क्रम की चर्चा। जी हाँ, आपका क्या क्या क्या क्या सही समझा बच्चों, वही जो चल रहा है, बाल धमाल। लो जी लो, हमने कहा नहीं कि आपने तो शुरू कर दिया बाल धमाल। अच्छा अच्छा अच्छा, आज छुट्टी है। अरे वाह भाई वाह बच्चों, तो शायद बच्चे यही तो खेल रहे होंगे आज कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और कोई कहता होगा अरे हम तो वैज्ञानिक बनेंगे। अरे बच्चों, हम सब जानते हैं बिल्कुल जो आप धमा चौकड़ी कर रहे हैं ना इस समय घर में, ये अंदाजा है आपकी दीदी को। और फिर आप बच्चों की कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं कम थोड़ी ही होती हैं। अगर आप मन में ठान लेना तो आसमान भी छू सकते हैं। लेकिन बच्चों, कभी आपने सोचा, हम जो सोचते हैं कि हम कुछ बनेंगे, जैसा कि अभी आप खेल खेल रहे होंगे शायद कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, ऐसा कुछ आप खेल अगर खेल रहे हैं, तो देखिए बच्चों, जीवन में कुछ करने की, अच्छा बनने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा हम कहाँ से पाते हैं, आपने सोचा कभी? अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, अगर नहीं पता तो चलिए हम जान लेते हैं आज बाल धमाल में चर्चा के माध्यम से। दरअसल बच्चों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से व्यक्ति या हमारे अपने ही कुछ होते हैं जिनकी बातें, उनके कार्य, उनके अच्छे गुण हमें प्रभावित करते हैं, और उन्हें देखकर हमारे मन में भी कुछ अच्छा करने की इच्छा जागती है। बस बच्चों, यही तो प्रेरणा है। अब बच्चों, आपकी प्रेरणा आपकी माँ भी तो हो सकती हैं। आपकी माँ, हाँ मम्मी दिन भर काम करती है ना, दिन रात परिवार की देखभाल करती हैं, मिलजुल कर

का ज्ञान नहीं देते बल्कि एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। बच्चों, प्रेरणा केवल किसी प्रसिद्ध या महान व्यक्ति से नहीं मिलती, कभी कभी हमारे आसपास रहने वाला कोई साधारण इंसान भी अपने अच्छे कार्यों से हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अब देखिए ना बच्चों, कोई खिलाड़ी हमें सिखाता है कि हार मिलने पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। आपके भी तो बहुत से दोस्त होंगे ना, जो आप स्कूल में भी तो पढ़ते हैं ना, तो देखिए आप देखते होंगे जब खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं आपके, तो आप देखते होंगे जब बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते गिर जाते हैं, लेकिन एक अंदर से उन्हें जुनून रहता है कि नहीं, उठकर हमें आगे बढ़ना है। तो जब आप देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा, अरे गिर गए तो क्या हुआ, हमें तो फिर से आगे बढ़ना है। यही तो बच्चों की खिलाड़ी हमें सिखाता है कि हम गिर जाते हैं तो गिरकर हमें उठना है, हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें फिर से प्रयास करना है। और कोई डॉक्टर हमें सेवा की प्रेरणा देता है ना, जब आप किसी डॉक्टर को देखते हैं कि दिन रात अपने पेशेंट के लिए लगा रहता है, मरीजों को देखने के लिए लगा रहता है, पूरा प्रयास करता है कि किसी ना किसी तरह से हम अपनी पूरी सेवा दें, हम इन्हें अच्छा करें, तो उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें भी किसी ना किसी की सेवा तो करना चाहिए। और कोई सैनिक, अब बात सैनिक की आई तो देखिए कितना गर्व होता है ना बच्चों हमें अपने देश के प्रति, तो सैनिक भी हमें देश के प्रति प्रेम और साहस की प्रेरणा देता है। यानी बच्चों, हम सभी की प्रेरणा अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात समान होती है। वो क्या बच्चों? वो ये कि हम अपनी प्रेरणा से कोई ना कोई अच्छा गुण सीखना चाहते हैं। एक बात और बच्चों, प्रेरणा का अर्थ किसी की नकल करना नहीं होता। ये मत सोचना कि दीदी ने कहा है कि हम इनसे प्रेरणा लेना है, हमें शिक्षक से प्रेरणा मिलती है, डॉक्टर से, इंजीनियर से, या किसी से भी, खिलाड़ियों से, तो उनकी नकल नहीं करना है, बल्कि किसी के अच्छे गुणों को अपना कर स्वयं को और बेहतर बनाना है। अपने आप को देखना है कि हाँ, हमें कमी कहाँ रह गई थी, हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है। और बच्चों, आगे चलकर यानी बड़े होकर स्वयं ऐसे कार्य करना है कि एक दिन स्वयं भी किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकें। हाँ बच्चों, आप भी कुछ ऐसे कार्य अपने मन में सोच कर रखिए, या बचपन से ही, कहते हैं ना कि आपको तो बचपन में जैसा ढाला जाए वैसे ही आप ढल जाते हैं, तो ये तो अच्छे संस्कार आपके माता पिता से, आपके गुरुजनों से आपको मिलेंगे ही, लेकिन आप अपने मन में भी कुछ ऐसे कार्य जो बचपन से आपको अच्छे लगते हैं, तो ऐसे सोच कर रखिए कि हाँ, बड़े होकर हम इन कार्यों को और अच्छा आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपके बाद भी आने वाले जो और भी बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, उन्हें देखकर, उन्हें उन आपसे कुछ सीखकर प्रेरणा ले सकें। तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकें। चलिए अब इसी चर्चा के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बच्चों बड़ा ही प्यारा सा गीत सुना है ना। सचमुच बच्चों, बचपन जीवन का वह खूबसूरत समय है जब छोटी छोटी खुशी भी बहुत बड़ा आनंद देती है। दोस्ती के साथ खेलना, बारिश में भीगना, खिलखिलाकर हंसना और बिना किसी चिंता के सपनों की दुनिया में खो जाना यही तो बचपन की खूबसूरती है बच्चों। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमें अपने बचपन की मासूमियत, खुश मिजाजी और हंसी को हमेशा अपने भीतर बनाए रखना है। अरे लीजिए बच्चों, बचपन की बातें करते करते दीदी तो अपने बचपन में खो रही थी नहीं नहीं बच्चों, चलिए चलते हैं। और अब जैसा कि आपको इंतजार है लोगों से मिलने का, है ना, पर चलिए क्यों ना पहले मुलाकात की जाए हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से। जी हाँ, शुरू होने वाला है बाल मंच।
1: लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: आइए बच्चों, अब हम मुलाकात करते हैं एक नन्ही सी बहुत ही सुंदर सी गुड़िया से।
3: दीदी मेरा नाम अनन्या पीपड़ा है।
0: अच्छा अनन्या, किस क्लास में पढ़ती है?
3: फिफ्थ
0: में आ गई। आप देखकर तो नहीं लग रहा कि आप फिफ्थ में आ गई। तो अनन्या, अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो आप क्या क्या करती हैं इस मौसम में?
3: खेलती हूँ और मम्मी से पकवान बनवाती हूँ
0: अच्छा, इसका मतलब है कि बारिश का फुल आनंद आप लेती हैं, है ना, पकौड़े बनवा के खाती हैं। तो और भी, तो जैसे बारिश का मौसम है तो आपकी मम्मी क्या क्या सावधानियां रखने को बोलती हैं आपको?
3: बारिश में ज्यादा ना भीगना और बारिश में गंदे पानी में ना जाना।
0: तो आज अपने साथियों को क्या लेकर आई हैं अनन्या?
3: मैं एक पोयम सुनाऊं।
0: तो इसका शीर्षक क्या है अनन्या?
3: हम सब सुमन एक उपवन के।
0: चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पर्णों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के।
0: वाह भाई अनन्या, आपने तो दिल खुश कर दिया, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: बच्चों अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम का एक क्रम बाल मंच, जिसके अंतर्गत नन्हे मेहमान अपनी बहुत सी रचनाएं लेकर, कविताएं लेकर और बहुत प्यारी प्यारी सी बातों के साथ हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हर बुधवार शाम 4 बजे उपस्थित होते हैं। तो आज हमने बात की अनन्या पीपड़ा से। जी हाँ, आज हमारे बाल मंच में आज के नन्हे मेहमान थे अनन्या पीपड़ा। अब चलिए चलते हैं पाठशाला की ओर।
1: तो बच्चों ये है
0: हाँ बच्चों, यही तो है रेडियो की पाठशाला, जहाँ मिलता है ज्ञान, नई नई जानकारी और बढ़ता है आत्मविश्वास। आप सोच रहे होंगे, अरे दीदी आज भी पढ़ाई, आज तो छुट्टी है। बच्चों ये क्या बात हुई, आज छुट्टी का दिन है तो भी ये दिन हमें कुछ खास करके यादगार तो बनाना चाहिए ना। अक्सर हम छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हाँ लगे कि हाँ आज छुट्टी थी, हमने कुछ किया। हाँ अब शायद आपको बात समझ आ गई। चलिए बच्चों, अब अपनी अपनी कोई भी पुस्तक तो निकालिए। अरे भाई, हमने कहा था ना रेडियो की पाठशाला लगने वाली है, तो अपना कॉपी पेन पुस्तक यानी अपना बैग लेकर तो आइए बच्चों, जल्दी जल्दी जाइए दौड़कर। हाँ ले आए ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों। हाँ बच्चों, अब किताब आपने निकाल ली ना, माना कि बहुत सी जानकारी मोबाइल और इंटरनेट से आपको मिल जाती है, लेकिन बच्चों किताब पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। किताब पढ़ने से हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है ना, नए नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी तो बढ़ती है। पर बच्चों बड़ी कमाल की बात है, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बिना पढ़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही तो बच्चों, किताब। लेकिन कभी सोचा कि सबसे पहले किताब किसने बनाई? कहाँ से आई ये किताब? जब किताब ही नहीं थी तब लोग कैसे पढ़ते थे, कैसे सीखते थे? अरे जानते हैं आप बच्चों, जब किताबें नहीं थी तब मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था, अनुभवों के द्वारा भी तो सिखाया जाता था। और धीरे धीरे बच्चों समय बदलता गया, तरह तरह की विधियां अपनाई गईं लिखने पढ़ने की, सीखने की। फिर पन्ना, हाँ जो पन्ने होते हैं ना किताब के, यानी पेज वाली किताब, जैसी आप भी सभी पढ़ते हैं ना पन्नों वाली किताब, कहते हैं ना ये पेज, इस पेज पर ये लिखा है, उस पेज पर वो लिखा है, वही तो है पन्नों वाली किताब। सबसे पहले रोम और यूनान के लोगों ने बनाई, जिसे वे कोडेक्स कहते थे। फिर कागज पर मशीन से छापी हुई पहली किताब 1450 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में बनाई थी बच्चों। और उन्होंने सबसे पहले बाइबल छापी थी। और बच्चों अपने भारत में छपी पहली किताब एक धार्मिक थी। तो बच्चों आज की रेडियो पाठशाला में बस हम चर्चा यहीं तक करेंगे, नहीं तो आप सभी कहेंगे अरे दीदी छुट्टी है, हम और काम कैसे करेंगे, मम्मी पापा के साथ घूमने भी तो जाना है। अरे बच्चों बिल्कुल जाइए, घूमने भी जाइए, लेकिन जहाँ भी जाएं बहुत कुछ सीख कर ज़रूर आइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। कौन सा क्रम बोलिए तो ज़रा, अरे सोचिए बच्चों। हाँ, बाबा जी का पिटारा।

0: बच्चों एक बार फिर आ गए बाबा लेके एक और प्यारी सी कहानी। बच्चों कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। बहुत सारे बच्चे लगातार ये बात करते हैं कि भाई ये बीरबल की खिचड़ी है क्या और ये बात कैसे आगे बढ़ी बीरबल की खिचड़ी। तो आज इस कहानी में हम जान जाएंगे कि आखिर बीरबल की खिचड़ी है क्या। तो बच्चों बहुत पुरानी बात है, एक बार सर्दियों की ठिठुरती रात में बादशाह अकबर को रास्ते में कुछ लोग मिले जो आग के चारों ओर बैठकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों में एक गरीब व्यक्ति भी था। बातों बातों में उस व्यक्ति ने अकबर से कहा कि वो इतनी ठंड में भी सारी रात यमुना के पानी में खड़ा रह सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। अकबर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को एक तरफ ले जाकर कहा, यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तब अकबर से हुई बात के अनुसार वो व्यक्ति सारी रात यमुना के पानी में खड़ा रहा। उसे इस तरह पानी में खड़ा देखने के लिए बहुत सारे लोग यमुना के दोनों किनारों पर एकत्रित हो गए। अगले दिन सुबह जब वो व्यक्ति बादशाह से अपना इनाम प्राप्त करने के लिए उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी सर्दी में यमुना के ठंडे पानी में खड़े रहकर सारी रात कैसे बिताई?
1: हुजूर, आपके किले के दियों से जो प्रकाश आ रहा था मैं उसे देखता रहा, इस तरह सारी रात बीत गई और मुझे ठंड का जरा सा भी एहसास तक ना हुआ।
0: अच्छा, तो तुमने दियों के प्रकाश को देखते हुए रात बिताई थी, तो फिर मैं तुम्हें इनाम किस लिए दूं? इसका मतलब दियों के प्रकाश की गर्मी के कारण ही तुम पानी में खड़े रह पाए, वरना इतने ठंडे पानी में खड़ा रहना तो बहुत ही मुश्किल है। बादशाह की बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और निराश होकर दरबार से चला गया। बीरबल को उस व्यक्ति के प्रति बादशाह का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति की सहायता करने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। बीरबल के बिना बादशाह अकबर का मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने बीरबल के बारे में पता करने के लिए उनके घर एक आदमी भिजवाया। बीरबल ने बादशाह के उस आदमी के हाथ अकबर को संदेश भिजवाया कि वो खिचड़ी बना रहा है और वो उसके बाद ही दरबार में उपस्थित होगा। अगले दिन भी बीरबल को दरबार में ना पाकर बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने स्वयं उन्हें देखने जाने का निश्चय किया। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन में दाल चावल मिलाकर उस पेड़ की एक शाखा पर टांग रखा है और नीचे जमीन पर हल्की सी आग जला रखी है। बादशाह अकबर ये देखकर आश्चर्य से बोले, बीरबल, ऐसी खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम्हारा बर्तन तो आग से इतनी दूर है कि इस तरह तो ये कभी भी गर्म नहीं होगा।
1: हुजूर, यदि उस व्यक्ति को इतनी दूर जल रहे दिए की रोशनी से गर्मी मिल सकती है और वो उसकी सहायता से सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो मैं भी तो उसी तरह से खिचड़ी बना रहा हूँ, फिर मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती?
0: बीरबल ने पूछा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को वापस बुलवाया और उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली इनाम में दे दी। तो बच्चों अब तो आप जान गए होंगे कि लोग कहते हैं बीरबल की खिचड़ी पक रही है। तो भैया समझ गए ना कि बीरबल की खिचड़ी कैसे पकती थी। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी
1: हमें लिख के जरूर बताना, बाबा फिर आएंगे। तब तक के लिए बाबा ये चला।

0: का पिटारा। बहुत अच्छी कहानी सुनने को मिली ना। अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी, शीर्षक था बीरबल की खिचड़ी। कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों, तो ये जो सीख है अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना है, हाँ जीवन में उतारना है सीख। और अब चलिए चलते हैं हिंदुस्तान की सैर करने। अरे भाई देखिए ना, आप ही ना कहा था ना छुट्टी है दीदी, हमें तो घूमने जाना है, तो चलिए हमारे साथ चलिए, दीदी के साथ चलिए हिंदुस्तान की सैर करने।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
2: जाके हिंदुस्तान की।
0: झांकी हिंदुस्तान की, बच्चों ये है हमारे बाल सभा कार्यक्रम का एक और बहुत ही सुंदर सा, हाँ हाँ मनोरम दृश्य देखने वाला क्रम। बच्चों आज हम इसमें बात करेंगे हिंदुस्तान के विभिन्न और स्वादिष्ट व्यंजनों की। और देखिए ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है, है ना बच्चों? आप अपने स्कूल में आपके शिक्षक भी बताते होंगे, पढ़ते होंगे, आपने अपनी पुस्तक में किताबों में पढ़ा भी होगा, है ना, भारत विविधताओं का देश है। तो और अनेकता में एकता के दर्शन भी होते हैं। हर प्रदेश का अपना विशेष खान पान भी होता है, विशेष रहन सहन होता है, वेशभूषा होती है। अब जानते हैं बच्चों आप, भारत के अलग अलग राज्यों के व्यंजन जो हैं वहाँ की संस्कृति और परंपराओं की पहचान कराते हैं। आप जहाँ भी घूमने जाते हैं तो तरह तरह के आपको व्यंजन खाने को मिलते हैं, है ना। हम मध्य प्रदेश का जो पोहा है और राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, अरे वाह भाई वाह बच्चों। और आगे तो सुनिए बच्चों, गुजरात का ढोकला, पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा आप अभी घूमने गए थे मम्मी पापा के साथ, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आपने तो सारा ये इन व्यंजनों का आपने स्वाद भी तो लिया होगा ना। और तो सुनिए बच्चों, अगर आप और भी आगे जाएंगे दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो दक्षिण भारत में इडली डोसा सांभर बड़ा दिए जाते हैं, मिलते हैं ना। हाँ हाँ अब सब जगह मिलते हैं, लेकिन ये तो है व्यंजन वहीं का, बहुत स्वादिष्ट होता है। और बिहार का लिट्टी चोखा, अरे वाह भाई ये तो बड़ा नया सा नाम है बच्चों, है ना, लेकिन है तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन। और महाराष्ट्र का बड़ा पाव, पश्चिम बंगाल का गुलाब जामुन, ये अलग ही पहचान है इन व्यंजनों की बच्चों। और बच्चों हर जगह के व्यंजनों में केवल स्वाद नहीं बल्कि उस क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति भी जुड़ी होती है। तो बच्चों भारत के हर प्रदेश की संस्कृति और उनके खान पान का हमें सम्मान करना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसी के साथ अब हम बातें तो आपसे बहुत सी करना है, समय भी होने को है, तो अब इस क्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं और चलते चलते आपको सचेत करेंगे। अरे भाई बारिश का मौसम है, बारिश में होने वाली बहुत सी परेशानियाँ ऐसी होती हैं तो उनके प्रति हमें सावधान भी होना चाहिए, सजग भी होना चाहिए, कुछ परेशानियों के प्रति जो हमारे आनंद में मौज मस्ती में विघ्न डाल देती हैं। जैसे हम कहीं बारिश के मौसम में घूमने गए, अब हम जैसे छुट्टी है आज ही आप कहीं जाएंगे, है ना, घूमने के लिए जाएंगे, और कहीं अगर फिसलन है और अगर फिसल गए तो अपने साथ साथ सभी का मजा जो है ना किरकिरा हो जाता है। इसलिए बच्चों जहाँ भी जाएं पैर बहुत संभल कर रखना है, और बारिश के जो सुविधाओं के साधन है ना, हाँ हाँ वही तो रेनकोट छाता ये भी अपने साथ लेकर ही जाना है, और अपना सूखा नाश्ता भी अपने साथ रख कर ले जाना है। अगर कहीं आप पिकनिक पर जा रहे हैं या अपनों के साथ ही जा रहे हैं तो ये तो मम्मी भी ध्यान रखेंगी, अगर मम्मी भूल जाती हैं काम में तो आप ज़रूर याद दिला दीजिए कि मम्मी मम्मी कुछ सूखा नाश्ता रख लीजिए, और नाश्ते के साथ अपने ये बारिश के जो रेनकोट है छाता ये ज़रूर रख लेना है। और एक बात और बच्चों, अपना मोबाइल आईडी प्रूफ यानी आधार समग्र पैन कार्ड फोटो वगैरह संभाल कर अपने बैग में रखना है ताकि बारिश के पानी से गीले ना हो पाए। तो बच्चों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर अपनों के साथ मौसम का भी आनंद लेना है। तो बच्चों आज हमने अपने बाल सभा कार्यक्रम में आनंद लिया, गीतों का, कहानियों का, है ना, और प्रेरणा की बात भी की, देश की झांकी भी देखी, रेडियो की पाठशाला में नई बातें भी सीखी और बारिश के मौसम में सावधान रहने के बारे में भी जाना। यानी आज का समय सीखने और मुस्कुराने दोनों से भरपूर रहा। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात और याद रखिए बच्चों, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी कोई व्यक्ति हमारा प्रेरणा स्रोत बनता है, कभी कोई किताब हमें नई राह दिखाती है, और कभी हमारी अपनी छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। इसलिए बच्चों, अपने आसपास की छोटी छोटी अच्छी बातों को पहचानिए, अपने माता पिता को और शिक्षकों को सम्मान दीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए, और सबसे ज़रूरी, हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी कीजिए बच्चों। और देखिए, बातों ही बातों में समय कहता है संग संग चले चलो, तो हम आपसे यही कहेंगे बच्चों, धीरे धीरे बड़े चलो। हार्दिक शुभकामनाएं हमारी और आशीर्वाद बड़ों का लिए चलो। इसी के साथ बच्चों, सुनंदा दीदी के साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें जंगल से।
1: बातें जंगल से, आज इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ है काला हिरण। नमस्कार काले हिरण जी, आपका स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताइए ना।
3: नमस्कार मेरे सभी साथियों, मैं काला हिरण हूँ। लोग हमको हिरण बोलते हैं, लेकिन मैं मृग प्रजाति कहूँगी, काला मृग, जिसको इंग्लिश में ब्लैक बग बोला जाता है। मैं अपने सुंदर शरीर और सुडौल सींगों के कारण पहचाना जाता हूँ। हमें तेज रफ्तार के कारण वाय देवता का वाहन माना जाता है और हमें भारतीय संस्कृति में चंद्रदेव का भी देवता माना जाता है। मैं मृग प्रजाति का हूँ। लोग हिरण कहते हैं तो हिरण और मृग में अंतर होता है। हिरण वो प्रजाति होते हैं जिनके सींग, जिसको हम एंटलर बोलते हैं, प्रतिवर्ष गिर जाते हैं, लेकिन मृग के सींग, जिसको हम एंटीलोप बोलते हैं, वो अभी भी नहीं गिरते, वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। और इंडिया में एंटीलोप जैव वैज्ञानिक वंश का एकमात्र प्राणी है।
1: क्या बात, आपने अपने बारे में बताइए काला हिरण जी।

0: जानना ये चाहते हैं कि प्रकृति में आप किस तरह से सहयोग करते हैं, आपकी क्या भूमिका है?
1: प्रकृति में मैं जो रहवास है मेरा, एक खुले घास मैदान में रहता हूँ, वो खुला जंगल रहता है, वहाँ पे रहता हूँ। ये घास प्रजाति जो है खाद्य श्रृंखला का मूल प्रजाति होती है। खाद्य श्रृंखला में जो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं उसमें घास आता है, और घास जो है काफी रहवास दूसरे एनिमल के रहता है, जिसमें टिड्डे, फ्रॉग, सरीसृप, रैबिट इत्यादि रहते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला और इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जहाँ पे अगर घास का मैदान स्वस्थ रहता है वहाँ पे मेरा रहवास होता है। मैं जहाँ पे हमारी संख्या ज्यादा रहती है, यह प्रतीत होता है कि वहाँ का घास मैदान, वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। इसलिए मेरा प्रकृति में जो सबसे बड़ा योगदान है कि जो घास के मैदान दिखते हैं, तो इसका मतलब हम जहाँ रहेंगे तो घास और प्रकृति वहाँ के स्वस्थ वातावरण निर्मित करते हैं।

0: बारे में एक खास बात है, हमें मालूम है कि आप बहुत तेज दौड़ते हैं, तो उस पे भी क्या आपके लिए भी कुछ खतरे हैं क्या?
1: देखिए मैं तेज तो दौड़ता हूँ, लेकिन खतरे इसलिए हैं कि जो हम तो खाद श्रृंखला के जो है सेकंड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि हम शाकाहारी जानवर हैं और मांसाहारी जानवरों का जो भोजन होता है शाकाहारी जीव होता है। अगर हमारे पास तेज रफ्तार नहीं रहेगी तो जो हमारे शिकारी तेंदुआ हैं, भेड़िया हैं एवं चीता है, वो जो है हमको बहुत तेजी से हमारे संख्या को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रहवास है ये जो घास का मैदान रहता है, खुला एरिया रहता है, वहाँ पे छिपने की जगह नहीं रहती, जिसके कारण यदि हम तेज नहीं दौड़ेंगे तो हम अपने को सुरक्षित नहीं रख पाते। और जब हम तेज क्या हम कुलाचे भी मारते हैं, जब कोई संकट आता है तो हम कुलाचे मारने लगते हैं, जिससे जो हमारे झुंड में दूसरे हमारे साथी लोग रहते हैं तो भी समझ जाते हैं कि कोई न कोई यहाँ पे जो है आफत आ चुकी है, कोई शिकारी एनिमल यहाँ आ गया है, तो जिससे वो भी सतर्क हो जाते हैं, वो अपने जान को बचा लेते हैं।

0: जानवरों के अलावा भी क्या आपको कुछ खतरे हैं?
1: जानवरों के अलावा भी इसलिए खतरे हैं कि जो आजकल मानव की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उनकी जो है इच्छाएं जो है उनके विकास के लिए काफी इंडस्ट्री हुई है, रोड हो गई, इवन खनन जो है प्रक्रिया ज्यादा हो गई है, बिल्डिंग बढ़ रहे हैं। तो क्या है, जो हमारा घास मैदान को लोग बंजर जमीन मानते हैं, कहते ही अनुपयोगी है, तो उस जमीनों को लोग जो है डेवलपमेंट करने के लिए काफी चीजें बनाने लगे, जिसके कारण जो घास का मैदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके कारण ये हो रहा है कि अब हमारे भोजन की अगर कमी होगी तो हम क्या करेंगे, हम किसानों के खेत के आसपास आएंगे, उससे हमारे उनके किसानों की फसल हम खाएंगे। तो क्या होता है कि फसल जब नुकसान होता है तो मानव या किसान जो है उसमें और हमारे बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। वो क्या करते हैं, अपने फसल को जो है बचाने के लिए कटीली झाड़ियां लगा देते हैं, इवन कटीले तार लगा देते हैं। आजकल के युग में तो वो लोग बिजली के तार बिछा देते हैं, जिससे कि यदि हम संपर्क में आएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। अगर कहीं से रोड भी 4 लेन 6 लेन बन रही है तो हमको आवागमन एक ओर से दूसरे ओर जाने में भी बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी एक्सीडेंट में हमारा मृत्यु हो जाती है।

0: अच्छा, अब अगला सवाल हमारा ये आ रहा है काला हिरण जी कि यदि आप समाप्त हो जाएं या संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
1: देखिए, यदि हम खत्म हो जाएंगे तो हमारे रहवास पे भी विपरीत असर पड़ेगा। वहाँ पे अनुवांशित झाड़ियाँ जैसे लिंटाना या छोटे छोटे झाड़ियाँ उग जाएंगी, तो उसके कारण क्या होगा, जो घास नहीं रहेगा तो जो छोटे कीड़े मकोड़े जंगल के खाद्य श्रृंखला के जो रहते हैं तो उनके भोजन की कमी हो जाएगी। उसके अलावा जिसका मैं मुख्य भोजन हूँ, जैसे भेड़िया हुआ, चीता या तेंदुआ हुआ, उनको जब भोजन जंगल में नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, गांव की ओर रुख कर लेंगे। और जब गांव की ओर रुख करेंगे तो किसान के एनिमल को खाएंगे, कभी कभी हो सकता है किसी आदमी को भी जो है घायल कर दे या मार दे या खा भी लें, उससे जो मानव और वन प्राणी में द्वंद्व जो है बढ़ जाएगा। इको सिस्टम में एक कड़ी अगर नहीं रहेगी तो हमारा जो इको सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आज आप देखिए जो है इको सिस्टम डिस्टर्ब होने, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण अतिवृष्टि होती है या तो सूखा पड़ जाता है, उसके कारण काफी जो इको सिस्टम में चेंजेज आ रहा है। अगर हम रहते हैं तो हमारा एक इको सिस्टम का जो है संतुलन बना रहेगा।

0: अब क्या करें।
1: लग रहा है कुलाचे मार के आप भागने की तैयारी में, लेकिन चलते चलते कुछ संदेश तो देते जाइए।
2: श्रोताओं, आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आपके गांव के आसपास जो पुराने जमाने में चरनोई जमीन थी, घास के मैदान थे, छोटे छोटे झाड़ियों के जंगल थे, आप उनको नुकसान करेंगे तो उसके कारण क्या है, इको सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का रहवास खत्म हो जाएगा। इसलिए आप उसको बना के रखिए, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी करिए, लेकिन वो सस्टेनेबल यील्ड की तरह उसको उपयोग करिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में बिश्नोई जाति होती है जो कि काला मृग और समी के पेड़, उसकी जो खेचड़ी जिसको बोलते हैं हम राजस्थान में, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया है। इसलिए जो आप देखेंगे कि उनके किसान जो लोग रहते वो तो कहते हैं कि अगर हमारा ये कृष्ण मृग जो हमारा फसल खा लेता है तो फसल हमारी दुगनी होती है। तो आप ये न समझिए कि आपका ये फसल नुकसान करता है, वो आपके फसल में वृद्धि का भी काम करता है, क्योंकि वो हमारी जो लेड़ी रहती है वो बहुत उपजाऊ, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स बहुत रहते हैं जिससे जमीन उपजाऊ हो जाती है, जबकि आपको वहाँ पे फर्टिलाइजर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद काला हिरण जी। और अब श्रोताओं के लिए हम बताना चाहते हैं कि आज काला हिरण की भूमिका में हमारे साथ रहे
1: भगवती प्रसाद तिवारी, असिस्टेंट डायरेक्टर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद संगीतकार थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य तरंग में यादों के अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजस्वी कामले की।

श्रोताओं आपको फिर से बता दें, शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत सुनिएगा नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग, संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: यासिर देसाई की आवाज में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे अर्को प्रभु मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज में। समीर के बोल थे, आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे

0: मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशन लाल नागरथ के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं। और उनका संगीत तो सुपर

0: है इन दोनों ही फिल्मों में। हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ,

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

0: ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आपके दीवाने।
1: तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा जब से

सोचा नहीं था, काली जुल्फें उड़ते बादल।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए, लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और कृष जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: संगीतकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे खरगोन जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। खरगोन जिले में नए कपास सीजन का मुहूर्त कल मंडी में होने जा रहा है। खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी नीलामी शुरू होगी। कपास यानी सफेद सोने की आवक और नीलामी से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बाजार में रौनक आती है। मंडी सचिव शर्मिला निमामा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कपास मंडी में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपनी उपज लेकर आएं और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का लाभ लें। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर खरगोन में पिछले दिनों कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले के 28 मंडलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन बेंचमार्क के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बेंच और डेस्क उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जनभागीदारी और समाज के सहयोग से स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ सेवा कार्य से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं। खरगोन जिले में पिछले दिनों न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, फुटपाथ व्यवस्था, हेलमेट के उपयोग और स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता पर जोर दिया गया। खरगोन जिला प्रदेश के 90 फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने आकाशवाणी को बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन, बेहतर सड़क व्यवस्था और लोगों में जागरूकता जरूरी है। खरगोन जिले में सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 3 सितम्बर को बामंदा कसरावत के बाद अब 11 सितंबर को ऊन, 18 सितंबर को महेश्वर तथा 25 सितंबर को दूधगांव और बड़वा के बेड़िया में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और ITI उत्तीर्ण युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ई क्लास की शुरुआत की गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कलेक्टर गुरु प्रसाद ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से ई क्लास का शुभारंभ किया। जिले के करीब 80 विद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय कंट्रोल रूम और स्टूडियो से अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों को लाइव कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 वरिष्ठ नागरिक 15 से 18 सितंबर तक मुंबई स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा प्रभारी ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। खरगोन जिले की विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी को लेकर भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की सचिव रंजना चोपड़ा ने केरियाखेड़ी और महेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बुनकरों, वन अधिकार पट्टाधारियों, स्व सहायता समूहों और विद्यार्थियों से संवाद किया। माहेश्वरी साड़ी, ग्रामीण पर्यटन, आदि सेवा केंद्र और होम स्टे जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सचिव रंजना चोपड़ा ने बताया कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़कर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने पिछले दिनों खरगोन जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। छात्रवृत्ति, आवास, छात्रावासों में भोजन, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के पानवा में निजी औद्योगिक इकाई का बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस परियोजना में करीब 106 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। महाप्रबंधक धनंजय शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से सहयोग कर रहा है। खरगोन जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच के लिए एकत्र दूध के नमूनों की रैपिड जांच में मिलावट नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी HL अवस्या ने बताया कि दुग्ध और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित जांच जारी रहेगी। और अंत में बात जिले के झिरन्या के एकलव विद्यालय की छात्रा अनुराधा की, जिसने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो सफलता हासिल की है जो कई बालिकाओं के लिए प्रेरणा है। अनुराधा का चयन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में MBBS पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। अनुराधा अपने गांव से डॉक्टर बनने वाली पहली छात्रा बनने जा रही हैं। खरगोन जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति जयशेखर की।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी सर, मेरा नाम परसोत्तम है, परसोत्तम वासुदेव, उमरारी से बोल रहे हैं, सागर से अपनी 35 किलोमीटर आगे बर्मान रोड।
0: अच्छा अच्छा
1: जी सर।
0: तो पुरुषोत्तम भाई हमें बताएं कि क्या करते हैं आप?
1: जी सर, मैं थोड़ी किसानी करता हूँ, अपने पास थोड़ी जगह है।
0: हाँ हाँ
1: जी सर, किसानी करता हूँ मैं।
0: बहुत ही अच्छी बात है, किसानी करना बहुत ही पुण्य का भी काम है और पवित्र काम है।
1: जी सर,
0: नेत्रदान के बारे में क्या जानते हैं आप?
1: सर नेत्रदान के बारे में यही है कि अगर कोई अपना कोई नेत्र दान करे तो इससे बढ़ के कोई दान नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अपने प्रति अगर किसी की अगर कोई काम बन रहा है, सेवा हो रही है, तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है सर। नेत्रदान, रक्तदान और कन्यादान, ये सब एक ही चीज है सर।
0: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। बता दे हमें गाना कौन सा सुनवाए हैं पुरुषोत्तम भाई?
1: जी सर, गाना हमको वो सुनवा दीजिए, आए मिलन की रात का है सर। क्या है सर, हम लोग जितने लोग हम हार पे खेत पे रहते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: और सभी लोग जुड़ जाते हैं आपके समय के इंतजार करते हैं, और बहुत बड़े बड़े बक्सा रखे हैं उसी में सुनते हैं और सबको सुनाते हैं और अपना काम करते हैं।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है पुरुषोत्तम भाई, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म आई मिलन की रात का ये गीत।

0: हेलो जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आपका।
0: जी सर,
1: अपना शुभ नाम बताएं।
0: हम सर ग्राम बड़राना से बोल रहे, राजू साहू।
1: आपका गांव कहां पर है बड़राना?
0: ये है सर सायपुर बंडा के बीच में पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं वहां पर आप?
0: यहाँ सर छोटी सी दुकान करें, किराने।
1: अच्छी बात है। अच्छा राजू भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि दान के नाम पे लोग आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, तो एक ऐसा ही दान है जिसे कहते हैं नेत्रदान। और नेत्रदान करने के लिए अगर हम अपने जीते जी एक फॉर्म भर देते हैं, औपचारिकताएं पूरी कर देते हैं, आपको ये भी बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना रखी जाए, हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती, ना शरीर कुरूप होता है, और दो व्यक्तियों को आंखों के लिए दृष्टि मिल जाती है।
0: सर अच्छा है सर, कोई भी कर सकता है?
1: कोई भी कर सकता है इसे।
0: हाँ जी,
1: और इसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया को देखा ही नहीं है, वो रंग नहीं पहचानते, वो लोगों को नहीं पहचानते, बस आवाजें और एहसास ही उनके पास होता है।
0: ये तो सही बात है सर जी,
1: तो ये पुण्य का काम है, तो जीते जी तो हम बहुत अच्छे काम करते हैं, अगर हमारे ना रहने पर किसी को कुछ फायदा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी, हम सर प्रयास करेंगे सर, यही सब लोगों से भी बोलेंगे।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। बताएं राजू भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: चरस फिल्म का सुना देना सर।
1: चरस का कौन सा?
0: ये याद या तेरी याद आई।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म चरस का ये गीत।

0: हेलो,
1: आकाशवाणी का सागर
0: जी। बिल्कुल सही, आकाशवाणी का सागर केंद्र है और कार्यक्रम का नाम है
1: फोन करे गीत सुने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: भगवानगंज से बोल रहे थे मुकदम सर। 19 साल में लगाया सर, आज पहली बार फोन, 19 साल पहले लगा था फोन।
0: अच्छा हाँ। तो वीरू भाई कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं भगवानगंज में आप?
1: सर हम वैसे तो पल्लेदारी करते हैं सर, मुकदम है।
0: हाँ, आपने नाम के साथ मुकदम जोड़ा हुआ है, तो पल्लेदारी में कितना वजन उठा लेते हैं आप डेली?
1: सर हम लोग 50 किलो की, अब क्या है सरकारी वजन 50 किलो का हो गया है, बैग का बोझियों का।
0: हाँ हाँ,
1: तो हम लोग 50 किलो का वजन का भी काम करते हैं।
0: इसमें आपकी पीठ में कमर में कोई किसी प्रकार का दर्द तो नहीं होता?
1: दर्द तो सर अब ऐसा है कि यदि जरूरत से ज्यादा है शरीर में जो क्षमता है ज्यादा, यदि आप काम करोगे तो पूरा शरीर चलेगा।
0: खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं आप?
1: बिल्कुल सर, खाने पीने का ध्यान रखते हैं सर।
0: जब भी वजन उठाए तो थोड़ा सा सांसों का ध्यान रखें, वजन उठाते समय सांस को भर लें और साथ में अपनी पीठ को अगर थोड़ा सा कड़क कर लेते हैं
1: हाँ,
0: तो वजन उठाना आसान हो जाता है।
1: हाँ सर ऐसा ही करते हैं सर, ऐसा ही हम लोग को सर ऐसा ही करते हैं। जैसे जब वजन उठाते हैं तो अपनी पीठ को थोड़ा टाइट कर लेते हैं,
0: कमर से टाइट करें पीठ को।
1: जी
0: वीरू भाई बहुत ही अच्छा लगा, खूब मेहनत करते हैं आप। अगर हम दुनिया से जाने के बाद भी अमर होना चाहते हैं, अपनी चीजों को देखना चाहते हैं, तो नेत्रदान करके हम ये काम पुण्य का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जाने के बाद भी दो लोगों को दृष्टि दे जाता है और इससे किसी भी प्रकार के चेहरे में बदलाव भी नहीं आता है, ना ही कुरूपता आती है। तो लोगों में नेत्रदान के बारे में जरूर बताएं।
1: जी सर।
0: और बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: सर हमराज फिल्म का गाना सुन रहा है तुम मगर साथ देने का वादा करो, क्योंकि वो गाना मुझे भी पसंद है, मेरे पिताजी को भी पसंद है।
0: तो वीरू भाई सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर महेंद्र कपूर का गाया हुआ फिल्म हमराज का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: कल्याण सिंह ठाकुर बोल रहे हैं सर, बेचनवारा से।
2: कल्याण भाई बताएं, क्या कर रहे हैं आप बेचनवारा में?
1: मका वाए सर।
2: बहुत ही अच्छी बात है। पानी ठीक ठाक है?
1: हाँ ठीक है सर, बारिश कम हो रही है सर।
2: हाँ, ये समस्या आ रही है। अच्छा कल्याण भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेत्रदान ये सबसे बड़ा दान माना जाता है और ये पूरी तरह निःशुल्क होता है और ये मानव सेवा का सबसे बड़ा रूप है। तो अपने जीवन में जीते जी अगर हम नेत्रदान करने का फैसला कर लेते हैं और एक उसकी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं, तो ये दो व्यक्तियों के लिए रोशनी दे सकता है जिन्होंने दुनिया कभी नहीं देखी है। उन दो व्यक्तियों के लिए उनको जीने का सहारा बन सकता है। हमारे जितने भी श्रोता हैं इस बात को सुन रहे हैं, तो वो नेत्रदान के बारे में फैसला जरूर लें।
1: सर नेत्रदान करना चाहिए सर।
2: हाँ
1: जी, क्या है कि दूसरे भी देख सकते हैं।
2: हाँ कल्याण भाई बताएं, गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
1: खुद्दार का सुना देना सर, अमिताभ बच्चन का गाना, मच गया शोर।
2: ठीक है, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म खुद्दार का ये गीत।

0: हाँ, ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो, नमस्ते सर।
5: नमस्कार, फोन करेंगी सुनने में स्वागत है आपका।
4: जी सर, सागर कैंट अनस मोमेंट जिला।
5: क्या करते हो?
4: पढ़ाई कर रहे हैं सर अभी।
5: बहुत ही अच्छी बात है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने घर में अपने मम्मी पापा को और अपने सभी रिश्तेदारों को बता सकते हो कि नेत्रदान सबसे बड़ा काम होता है। अगर एक व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उससे दो व्यक्तियों को रोशनी मिल जाती है।
4: जी सर।
5: हमें ये बताओ, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
4: परदेशी। परदेशी गाना नहीं,
5: राजा हिंदुस्तानी का।
4: यस सर।
5: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
3: मकरौलिया से बोल रही हूँ।
2: नाम बताएं अपना।
3: दमयंती विश्वकर्मा।
2: दमयंती जी क्या करते हैं आप?
3: कुछ नहीं, घर पे ही रहती हूँ, घर का काम काज करती हूँ।
2: अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ के कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं आप?
3: पूरा सुनती हूँ, FM जो लोग भी आते हैं वो भी सुनते हैं, और ये सुबह की जो न्यूज है वो सुनते हैं।
2: अच्छा,
3: दिन भर हमारा FM चालू रहता है फोन में।
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काम करने में फायदा मिलता होगा इससे।
3: जी हाँ, मन लग जाता है काम में।
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। दमयंती जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें जीवन में नेत्रदान के बारे में जरूर सोचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी नेत्रदान जरूर करें।
3: जी सर, ये नेत्रदान करने से देखो अपनी तो जैसे जिंदगी पूरी हो गई, तो अपन को तो वो खुशी मिल गई।
2: हाँ।
3: जिसके पास नहीं है तो उनको भी मिलना चाहिए वो खुशी जो अपन को मिली।
2: बिल्कुल सही कहा, वो भी प्रकृति को देख सकें, रंगों को पहचान सकें,
3: उनको भी हर खुशी मिलना चाहिए कि देख सकें, मतलब जो खुशी अपन को मिली वो उनको भी मिलना चाहिए।
2: हाँ, तो दमयंती जी हमें बताएं गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
3: याद तेरी आती है, ये फिल्म का नाम तो नहीं याद आ रहा है, आती है मुझे तड़पाती है।
2: बहुत ही अच्छा लगा दमयंती जी आपसे बातचीत करके, और सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर अफसाना प्यार का, इस फिल्म का ये गीत।
4: या।

0: हेलो।
1: स्वागत है आपका, फोन करें गीत सुने में।
0: हाँ सर, नमस्कार
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: जी। उमेश पटेल बोल रहे थे चनाटोरिया से। सर
1: उमेश, क्या करते हैं चकटोरिया
0: देखिए
1: पे?
0: जी, करते कुछ नहीं है, बस जैसे बैठे रहते हैं।
1: क्यों?
0: दिव्यांग है सर, आंखों से दिखाई नहीं देता है।
1: हम उम्मीद करेंगे कि आपकी आंखों में रोशनी जरूर आए। और आज का जो
0: जी
1: हमारा
0: सर,
1: मुद्दा है उमेश भाई, यही है कि लोगों को नेत्रदान करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए और प्रेरणा भी देना चाहिए कि वो आप जैसे लोगों को मदद कर सकें और आप जैसे लोग इस दुनिया को देख सकें।
0: जी सर, जी सर, जैसे सर सर बोल रहे हैं।
1: हाँ उमेश भाई, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे नेत्रदान के ऊपर?
0: हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि जितना ज्यादा हो सके उतना नेत्रदान करिए, क्योंकि जिस आदमी की आंखें नहीं होती वो कुछ नहीं देख पाता है, और अपने द्वारा अगर वो देख सकता है तो ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है।
1: उमेश, उम्मीद जरूर रखें कि कोई ना कोई व्यक्ति नेत्रदान करेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। तो बताएं गाना कौन सा सुनवाएं उमेश हम आपको?
0: मेरे को गाना सुनना है, मेरी जंग पे गाना सुनना है मुझे। वो है कौन सा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है।
1: बहुत ही बढ़िया। और अगर लोग आपके संग हो जाएं, नेत्रदान करने के बारे में अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, तो ये जंग हम जरूर जीत सकते हैं। चलिए सुनते हैं उमेश जी आपकी फरमाइश पर मेरी जंग, इस फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे हेमंत तिवारी, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति थी जय शेखर की।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: त्रिविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी,
1: जी जयंत जी,
0: बस एक दिन पहले हमने शिक्षक दिवस मनाया।
1: जी हाँ, सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम।
0: और शिक्षक की बात होती है तो कबीर का एक दोहा बरबस याद आ जाता है,
1: जी।
0: सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरुगुन लिखा न जाए।
1: वाकई ये बात तो बहुत सच है कि गुरुगुन लिखा न जाए, इसीलिए तो गुरु को और शिक्षक को भी बहुत महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और कई बार तो जो पहला अक्षर होता है वो भी बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है।
0: और जैसे घर में माँ चलना सिखाती है, समाज में कैसे चलना है,
1: जी हाँ,
0: ये गुरु से ही सीखा जा सकता।
1: और वही जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वही जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके, इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। जयंत जी,
0: जी,
1: एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है।
0: देखिए कितना अच्छा संयोग है।
1: जी हाँ, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में, तब से लेकर अब तक हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है।
0: अवश्य, और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है वो है डिजिटल लिटरेसी।
1: जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे तो वो भी बहुत जरूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं, तो इस चीज का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है।
0: बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए।
1: जी हाँ, ये एक योग है। और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प, क्योंकि कई फिल्मों में आपको याद होगा जैन जी, बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहां शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं।
0: तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को,
1: और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है।

0: जी,
1: जी।
0: भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहर्निश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में।
1: जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, जो हमने मनाया
0: जी
1: शिक्षक दिवस के रूप में। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ
0: जी,
1: मगर शिक्षा के और भी कई साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, माध्यम है जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसे जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन की जो हमारे साधन है उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन, यानी उनसे बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक नायिका और निर्देशक निर्माता संगीत इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता, और फिल्में हमारे सामने आती हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए हाँ। कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था, और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: बिल्कुल,
0: किस
1: बिल्कुल, और हम आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को। और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो
1: वरना ना हो,
0: वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई।
1: और अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी, उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी,
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं, और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी,
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने, और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले, और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद आते हैं वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा जयंत जी।
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी, और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेश खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की, आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद का वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नजाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने तूने देखा मैंने देखा मैंने सुना तूने सुना आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे वो ये चीजें मुझे साहब बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि गाना हो तो जरा मजे का तबीयत खुश हो जाए यानी एक मूड आ जाए एक किसी चीज में खो जाए ये वो गाने जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं कि क्या हुआ जब साहब मेरी शादी हुई मतलब शादी हो रही थी तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं हमारे माँ बाप ने हमारी शादी हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी अब हमको ये फिक्र रही उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे कितनी ना बड़ी नाक होगी क्या होगा चीज चेक के दाग होंगे पता नहीं ये इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ ना कुछ सोचता रहता है लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना लाके रखा तो हमने देखा वाह वाह हमारी बीवी गोरी चिट्टी है मुझे बड़ी पसंद आई लेकिन जब उसने मेरा मुँह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।

महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गीबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीजों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीजों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम वो कहते यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने बीने खा रहे कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने मैं उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगाया। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है, तो कहने लगा यार वो मैं गाना लगाता हूँ, वो मुझसे का भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

वैसे पहले बॉम्बे टॉकीज में मैं पहला, मुझे जो बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला प्रतिमा में, जो मेरा रोल था, मैं जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था ठुमक ठुमक क्यों छनना मेरे अंगना आओ जी अजी आओ जी अजी आओ जी आओ जी ठुमक ठुम। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये एक गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी आवाज है।

0: जयंत जी, मुकरी जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई और बहुत आनंद आया उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, बहुत खुश मिजाज व्यक्ति।
1: मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत।
0: वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है।
1: बिल्कुल, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।
0: बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना, जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: जी, जानी मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था।
0: जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे, जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
1: जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए, वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में, और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागवान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था।
0: फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदेश जी और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कॉम्पिटिशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था, और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा एंड देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ। फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ा दें फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस स्कूल की तरफ से आया हुआ।
3: क्या उम्र रही होगी?
2: आई वाज आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे? तो मैं कहा ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक

0: घर पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे, और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया, एंड तो मैं सीधा बॉम्बे आया। वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं।
1: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे।
0: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफी समझाया, और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा।
1: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
0: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए। तब जाकर उनकी लगातार मैं 3 फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकेंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई, तो उसका गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफी हिट हुआ। बट एक और गाना था चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोएट्री थी, क्यों फूल खिलते हैं, स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने, और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने।
1: आपकी बहुत सारे जो गीत उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया, और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है। ऐसी जीवन संगिनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
0: विजेता का जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया। और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया, अच्छा था म्यूजिशियन था हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने आपको बताऊं, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था, मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
1: अपना एक बैंक
0: कि बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता क्यों रहता है ऐसा क्यों। मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी,
1: कंट्रोल करती थी।
0: शादी के बाद विजेता आ गए तो विजेता ने बोला कि ना, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया, मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं।
1: आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?
0: मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था, लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें, और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था, तो सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं, और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं, और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उसे आप गुनगुनाया करते थे?
0: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल।
1: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
0: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
1: अच्छा।
0: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब के गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
1: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
0: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में साल दो साल भर पंचम दा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपन ईयर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने ये मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका,
1: बहुत खूबसूरत।
0: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मज़ा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक खंजरी टैम्बरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत है उस बीट की है। दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज़ बहुत किया पंचम दा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज़ किया पहाड़ी राग में।
1: आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
0: देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं, तो वही चीज़ मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूं। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था मैंने कहा नहीं, मैं कोई मेलोडी पकड़नी। मोरा

0: श्रोताओ, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया। कभी मौका मिला तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज के विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
1: जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका।

0: अमर गीत के गायक
1: जी,
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूँगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुवादित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, उन्होंने उसमें संगीत के खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।
2: भूपेन जी, अपने उभरते बालिकाली के बारे में कुछ कहेंगे।
3: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है, अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
2: जी।
3: तो वहाँ यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सब के बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
2: जी
3: माँ, पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे
2: जी।
3: पिताजी स्कूल टीचर थे
2: जी।
3: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्शिक जितना छंद है, जितना सुर है, वो तो आया उसी के,
2: ये तो विरासत में
3: जी। हाँ, अभी भी याद है माँ गाती थी ललेबाई,

0: भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
1: गांधी जी हमारे आसाम में कभी कभी आते थे, जब तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंत हजारिका, तो गांधी जी आके कहते कि वो हजारिका का दो बच्चा है, भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे, वो भी एक ब्रजावली भाषा में, आसाम के पुराना असमिया में थे।

0: चंदाना, शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे, असम के ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद
1: जी।
0: ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि युगर फिरिंगति मय नतुन अहम गढ़ीम, नतुन भारत गढ़ीम, नतुन भारत गढ़ीम, सर्वहारार सर्वस्व पुनर्फिलाय आनीम। सर्वहारा का सर्वस्व हम फिर लोटा के ले आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी था नहीं, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है और वहाँ है चाइना, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसा किए थे, दर डा डा डा डा डा प्रतिध्वनि सुनो, प्रतिध्वनि सुनो, प्रतिध्वनि सुनो, मैं प्रतिध्वनि सुनो, मोर गावरे सीमारे पार्टीर सीपार नतुन सियार तीर, प्रतिध्वनि सुनो। I listen to the new sounds that is coming beyond, from beyond the hills. I don't know what are there. Pratidhani, एक Indian youngster का ये मन का एक इच्छा है कि एशिया में और कहाँ कहाँ क्या है चारों तरफ। आज सुनाना चाहता हूँ ये असमिया गाना का ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किए थे हमारा शिवदास बैनर्जी, बंगाल के कवि, गीति कवि। प्रतिध्वनि सुनी और प्रतिध्वनि सुनी।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, वो सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे लोक संगीत वगैरह को, फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से, फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने,
1: हाँ
0: उसमें,
1: हाँ वो तो स्वाधीनता के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था।
0: हाँ जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माई PhD इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम, तो वहाँ उन लोगों के बात कह के टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रॉन्ग था। तो उसी वो एक एटिकोली दुटी पात रतनपुर बागीसात लह पोहिया हाते रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा
1: मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी, हाँ।
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी, एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री दे के।
2: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा इन विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी,
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलांकोली बेब, डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा, मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना, ओ आइता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रैवलर। तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूलेछि निजेर घर, घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से तो रूपांतर किए थे, याजाबर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा
0: जी,
1: हाँ आवारा हूँ।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा
1: जी, बिल्कुल। और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं, मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर,
0: हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में, गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है खेल।